0: अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
2: अन्ने अन्ने सिपाय अन्ने नम्म ऊर नल्ल ऊर इप्परुम्ब कट्टु पोच्चन्ने।

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो चलो चलो, हाँ चलेगा।

0: आंखों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: The Local Lockdown, Saturdays 6 to 9 p.m. only on Lotus FM.
1: राधे राधे सखियो, चलो बरसाने की ओर चलते हैं।

सखियों चलो वृंदावन की ओर चलते हैं, वहाँ पे माखन मिश्री मलाई रबड़ी सब कुछ मिलता है।